जीसस करना किरा निनारा मनाने मोहिनी लाइक रा मिस्कितो नाने मेबे मन दोनों मा लमला क्लहन का तारा कुम नायुआ देका माई ब्रीसा मन लमला लुपिया विल की बामन स्मा सिप फिंकी कमरा